वाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 17 तारीख दिन है शुक्रवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री सांगे बुम्पा सिरथिपा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री कामे यांगफो, श्री लाम सिंह और सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री हेमंता स्वर्गिरी, मुनपा में उद्घोषक हैं श्री थुपदन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मेरे नेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: in the Royal Australian Air Force's premier multinational air combat exercise, Pitch Black 2026. The exercise will be held from the 20th of July to the 7th of August at Royal Australian Air Force bases in Darwin, Tyndall and Amberley in Northern Australia. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha. Parts of Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura, Uttarakhand, Vidarbha, West Bengal and Sikkim are also expected to receive moderate to heavy rainfall during the day. A report.
1: The weather department also predicted thunderstorms and lightning today over Gangetic West Bengal, Jammu and Kashmir, Ladakh, Muzaffarabad, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rayalaseema and Telangana. Similar weather conditions are also expected at places over parts of Northeast India, Andaman and Nicobar Islands, Bihar and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Meanwhile, heat wave conditions are likely to persist today over Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. The Met department said that Andhra Pradesh, Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to experience a hot and humid day today. With Priya, this is Anuja Kumar for Akashwani News, Delhi.
0: In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu has advanced to the semi-finals of the Japan Open 2026. Sindhu progressed after Japan's former world champion Nozomi Okuhara withdrew from their women's singles quarterfinal, giving the Indian shuttler a walkover. World number 10 Sindhu will now face China's world number 4 Chen Yufei in the semi-finals tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana. Also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today, and in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है
3: दो नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है भिवानी में पंडित ने

0: शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
0: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में ही डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहेम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
4: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों

0: पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। चंद्रपाल दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनकी आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित यह प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमरीकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रस्तारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे पहले गांधी स्मृति, तत्पश्चात मन्नर उदास की आवाज में श्री लक्ष्मी मंत्रो जाप। तो चलिए पहले सुनते हैं गांधी स्मृति के अंतर्गत हरिजन विषय पर गांधी जी का विचार।

0: स्मृति। हरिजनों पर अपने विचार प्रकट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि हरिजनों को लोग आज अपना सेवक और गुलाम मानने लगे हैं, पर वस्तुतः वर्णाश्रम के चारों वर्ण ही सेवा के आधार पर बनाए गए थे। किसी का कार्य था धर्म का पालन कराना, तो किसी का धर्म की रक्षा करना, किसी का कार्य था देश की समृद्धि के लिए उद्योग करना, तो किसी का कार्य था सेवा के अन्य कार्य टहल करना। अतः हरिजन को गुलाम मानकर एक पंचम वर्ण चलाना सरासर अन्याय है। आज अन्य लोगों की तरह ही हरिजन को भी विद्वान और व्यवसायी होने का अधिकार है। लीजिए सुनिए हरिजनों पर बापू जी का प्रवचन।
1: अभी आज मैं आपको हरिजनों की बात सुनाना चाहता हूँ, तो वो तो हमारी शर्म के लिए है। रोहतक में तो अंग्रेजों से नामों का हम तो वहाँ हरिजन तो हर जगह पर पड़े हैं, तो वहाँ हरिजन कहते हैं, तो वो मीठा ऐसा है, तो वहाँ तो जाट लोग पड़े हैं, शायद अहम लोग भी पड़े हैं, तो उसी जगह पे है, तो उनके दिल में कुछ ऐसा ही हो गया है कि वो हरिजन वो तो हमारे गुलाम है, तो उनके पास से तो जो कुछ काम देना है हम लेंगे, और पीछे वहां पर देखो हक की बात आ जाती, हक से नहीं, क्योंकि वो तो हरिजन है ना, तो वो तो जन्म से ही हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। उसको पानी चाहिए तो पानी हम दे तो पिए, न दे तो प्यासे रहे, खाना चाहिए हम दे तो खाए और नहीं तो भूखा रहे, और दौड़ा या दे तो हम दे तो ठीक है और न दिया तो वो हमसे हक से कुछ ले नहीं सकते हैं। तो इसको तो मैं तकबरी मानता हूँ। तो अंग्रेजी स्वतंत्र चलती थी तब भी ऐसा करता था, लेकिन अब तो वो चीज ज्यादा बन गई है। तो हरिजन बेचारे वो तो गरीब रहते हैं, मेरे पास आ गए कि हमारे पर तो आज ऐसी गुजर रही है, उसका कोई चारा है, हम कुछ कर सकते हैं कि हम हमको तो अभी गुलामी में लेना चाहिए कि हम मर जाएं, कि वहां से रोहतक जिला को छोड़ दें, क्या करें, अभी वो छोड़ भी नहीं सकते, ये एक समझने लायक बात है, क्योंकि वो तो नहीं मारे उसको, जाते हैं कहाँ, रहते हैं कि नहीं, और ऐसा काम करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो छोड़ दे बिल्कुल तब पीछे ऐसी बात पर रह जाते उसका काम बिगड़ जाता है, और वो तो कभी करने वाले नहीं है, इसलिए उनका काम तो बिगड़ता है, लेकिन हरिजन को तो गुलामी ही करना है ऐसा हो जाता है। तो मेरे पास आ गए, वो तो बेचारे वो मदरसा में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत आगे पढ़ते हैं, कोई छोटा थोड़ा सा पढ़े पढ़े लेकिन पढ़ते हैं, और काम भी सीखते हैं, उद्योग भी सीखते हैं, मैंने तो उनकी बात हुई, लेकिन वो लोग जो उनको ताराज कर रहे हैं उनका क्या कहें। तो मैंने आपको ख्रिस्टियों का तो कहा, अब भी हरिजनों पर, अभी तो ऐसा हो गया ना, अच्छा अंग्रेजी सत्ता चलती थी तो कभी तो हमको मारपीट कर सकते थे, हमको दंड कर सकते थे, अभी हमको आज कौन दंड करेंगे, हम सबको दंड ले सकते हैं, और हमको अगर जज के सामने ले जाए तो जज को हम दया देंगे, जज हमको क्या करने वाला था, ऐसी तकबरी हमारे में पैदा हो जाए तो उसका नतीजा यही आ जाता है कि वो हरिजन है उनके जमा होते हैं। तो इसलिए मैंने तो सोचा कि आज की शाम है उसमें आपको मैं हरिजनों की तो कई कथा बोली सुनाऊंगा, कि अगर इतना भी हम नहीं कर सकते हैं कि जिसमें तो हमारा धर्म परा है कर्म परा है, कि उनको जो आज तक हम अछूत मानते आए हैं, गुलाम जैसे मानते आए हैं, वो तो हमें बड़ी

पाप किया, उसका प्रायश्चित रूप में तो हरिजन सेवक संघ बना है। प्रायश्चित रूप में बहुत हम कर लेते हैं, बहुत किया भी है, लेकिन सब हिंदू ने नहीं किया है। करोड़ों की आप संख्या में हिंदू है तो वो तो एक सारा दरिया पड़ा है, तो जितने उसमें हिंदू है उन्होंने सब अपना नहीं लिए है। तो मुझको ये कवि कथा आपको सुनानी भी क्यों पड़े। तो जब तक हम ऐसा करते रहे और अभी करें, अंग्रेजों के राज्य में तो करते थे तो अंग्रेजों को गालियां देते थे, हाँ वही ऐसे है, नहीं तो हम अच्छे हो जाते, लेकिन अभी तो चले गए तो हम अच्छे हुए कि हम तो बुरे हुए। तो हमको समझना चाहिए कि उन पर हमारे ऐसे जुलम नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझको ये डर है कि ऐसा भी हम जातियां करते हैं और करते थे पहले जमाने में, उससे ज्यादा उसका सबब ये है क्योंकि हमारे दिल में एक प्रकार की झूठी हिम्मत आ गई है। तो अभी मारो ख्रिस्तियों को, क्योंकि पहले से ही करो साफ तो पीछे हम यही, तो पीछे हम जाके जाति स्थान बनाएंगे, आहिर स्थान बनाएंगे।

डर है कि ऐसा भी हम जातियां करते हैं और करते थे पहले जमाने में, उससे ज्यादा उसका सबब ये है क्योंकि हमारे दिल में एक प्रकार की झूठी हिम्मत आ गई है। तो अभी मारो ख्रिस्तियों को, क्योंकि पहले से ही करो साफ तो पीछे हम यही तो पीछे हम जाके जाति स्थान बनाएंगे, आहिर स्थान बनाएंगे और पीछे हर एक अपना बनाएगा, हिंदुस्तान का कोई नहीं बनाएगा। ये आखिर में हम नतीजे पर आते हैं। इसलिए मैं कहूंगा बार बार कि हमारे हरिजनों को तो अपनाना ही चाहिए, वो तो जैसे हम हिंदू हैं ऐसे ही है, वो कोई पंचम जाति है नहीं। पंचम जाति ऐसी चीज हिंदू धर्म में हो नहीं सकती है। चार वर्ण है सही, तो चार वर्ण का भी अर्थ ये तो है ही नहीं मेरी निगाह में, एक ऊंचा और दूसरा नीचा, लेकिन चार में सब जितने पेशे हो सकते हैं, तो एक का काम है कि धर्म सिखाना और करना, दूसरा का है कि धर्म की रक्षा करना और तीसरा का काम है कि तिजारत करना। तो अपना पेट भर, अपना घर भरने के लिए नहीं, करोड़ रुपया पैदा करने के लिए नहीं, अपने लिए, लेकिन करोड़ पैदा करें और शुद्ध कोली हो और वो सब प्रजा के लिए है। तो पीछे कोई तो सेवा करने वाले होने चाहिए, तो शूद्र तो वो सेवा करे, लेकिन चारों साथ साथ खड़े रह सकते हैं, साथ साथ बैठ सकते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं कि जो शूद्र है वो पीछे बैरिस्टर बन गया तो बैरिस्टर नहीं कर सकता है, तो भी उसको तो शूद्र का ही मन सेवा का ही काम करना है, सब सेवा है। जो धर्म सिखाता है वो भी सेवा करता है, जो रक्षा करता है वो भी सेवा करता है, जो तिजारत करता है वो भी सेवा करता है, और जो चाकरी नौकरी करता है, हमारा पानी भरता है, झाड़ू निकालता है, अनेक काम करता है, वो सब सेवा ही सेवा है, चारों सेवा है। लेकिन चारों सेवा क्षेत्र है उसके लिए वो बनाया, उसके लिए पीछे है किसी को वो धर्म सिखाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब भी नहीं है कि वो छोड़कर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो बड़ा पाप कर लेगा। ऐसा एक वर्णाश्रम धर्म तो पड़ा है, उसको भूल गए, उसका अनर्थ कर लिया, पीछे उसमें से तो अनेक जातियां पैदा की और उसमें पीछे पंचम वर्ण पैदा किया, तो वो तो सब हमारी गलती है, हमारी दुष्टता कहो तो वो है, हमारे हम धर्मों से हट गई इसलिए हमने किया। तो अगर हम आज तो हमारे हाथ में बागडोर आ गई है, तो हम हिंदू हम सिख सब कोई अपने अपने धर्म के मुताबिक चले, तब तो मैं समझता हूँ कि सब काम हो सकता है।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे गांधी स्मृति के अंतर्गत हरिजन विषय पर गांधी जी का विचार। आइए अब सुनते हैं मनहर उदास से श्री लक्ष्मी मंत्रो जाप।
1: लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति तथा संपत्ति प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का सस्वर पाठ तथा श्री सूक्त की ऋचाओं से घृत होम करने का विधान वेदादि शास्त्रों में वर्णित है। विशेष रूप से आधुनिक युग में वेदादि मर्यादा से हीन मनुष्य श्रीहीन, कांतिहीन और चिंतित तथा अशांत दिखाई देते हैं। उनके कल्याण के लिए श्री सूक्त पूर्वक होम विधान अत्यंत लाभकारी है। प्रातःकाल खिले कमल में गुणों का आश्रय लेने वाली लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है। प्रातः प्रबुद्ध कमलम आश्रयेत श्री गुणाश्रय। जो व्यक्ति सूर्योदय के समय स्नानादि से निवृत्त होकर श्री सूत का सस्वर पाठ सहित होम करता है, उसके पास संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य से युक्त लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। यही श्रीदेवी मनुष्यों को चिंता और शोक भरे भवसागर से पार उतार देती है। तरति शोकम आत्मविद। श्री सूक्त उपासना से मनुष्य सांसारिक वैभव तो प्राप्त करता ही है, उसको आध्यात्मिक संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। वह आत्मविद आत्मतत्व को सहज ही जान लेता है। जो व्यक्ति 21 बार श्री सूक्त के षोडश मंत्रों से श्री होम करता है,

वह सांसारिक ऐश्वर्यों के साथ साथ अष्ट सिद्धि और नव निधियों को सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र को सस्वर पढ़ने सुनने मात्र से ही व्यक्ति को आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों प्रकार की शांति प्राप्त होती है। जो मंत्र पाठ नहीं कर सकते वे मंत्र सुनकर स्वाहा कहते हुए हवन करें। मंगलवार से हवन पूर्वक श्री सूक्त का जप अत्यंत लाभकारी होता है। 72 दिनों में 1,25,000 विधिपूर्वक जाप करने से श्री सूक्त सिद्ध होता है। सिद्ध होकर ही मंत्र व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। ओम शांति शांति।

मन्ना रुदास की इन श्री लक्ष्मी मंत्रों जाप के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। चलिए अब आनंद लेते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत मायूक हजारिका के आवाज में चंद आधुनिक आसामिया फिल्मी नगमे। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत मायूख हजारिका से छंद आधुनिक आसामिया नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे मायूख हजारिका के आवाज में चंद आधुनिक आसामिया फिल्मी नगमे। इसी के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के 5वीं सत्र की छात्रिका कुमारी नीलम दर्जी से आत्मनिर्भर बनने और आत्मविश्वासी बनने के विषय पर एक वार्ता।
1: मैं नीलम दर्जी, दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय की 5वीं सत्र की छात्रा, आकाशवाणी तवांग के कार्यक्रम मेरी बात में अपने बात रखने का अवसर पाकर अपना हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैं एक ऐसा विषय पर बात करना चाहती हूँ जो मेरे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालता है, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बनना। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपनी जीवन यात्रा की पूरी जिम्मेदारी को स्वयं ग्रहण करना, अपने निर्णय स्वयं लेना और अपने सपनों को अपनी निष्ठा और परिश्रम से साकार करना। जब हम किसी कार्य को अपने प्रयास से पूरा करते हैं तो उससे हमारे मन में एक गहरा गर्व उत्पन्न होता है, हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कोई साधन या वस्तु नहीं, यहाँ तक कि कोई अनुदान भी नहीं, या तो अपने आप को पहचानने की कला है, या तब उत्पन्न होता है जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें सुधारने को संकल्प लेते हैं और कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करते हैं। मनुष्य के जीवन में हार और विफलता स्वयं एक शिक्षक की तरह होती है। हर विफलता हमें एक नई दिशा, नई दृष्टि और नया साहस देती है। इसलिए ये स्मरण रखिए, विफलता अंत नहीं, नई आराम का संकेत होती है। जीवन के रास्ते हमेशा सरल नहीं होते, कभी संकट आते हैं, कभी बाधाएं होती है, कभी मन में संदेह उत्पन्न होती है, लेकिन जो व्यक्ति हृदय में आत्मविश्वास रखता है वह किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य से कर लेता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति का चरित्र बुद्धिवा होता है। वह किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, सुझावों या टिप्पणियों से परिवर्तित नहीं होता। वह अपने मर्मा की आवाज सुनता है और अपनी यात्रा को स्वयं निरंतित करता है। युवा वर्ग के लिए आत्मविश्वास अत्यंत आवश्यक है। युवा अवस्था ही सपनों को रूप देने का समय होती है। इस दौर में यह आवश्यक है कि हम अपनी शक्ति को समझें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करें। कई बार लोगों की टिप्पणियां समझ की अपेक्षा

0: चाय या अपने ही मन के संदेह हमें रोकने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है वह प्रत्येक पर्वत को भी पार कर सकता है। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में शांत, स्थिर और दृढ़ता से बाहर होता है। उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है और उसका संकल्प मजबूत। अंत में मैं सभी श्रोताओं से एक निवेदन करना चाहती हूँ, अपने अंतर मन की शांति को पहचानिए, उसे पोषित करें और अपने जीवन को उज्जवल, प्रभावशाली और सफल बनाइए। आप सभी का धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के पांचवी सत्र की छात्रिका कुमारी नीलम दर्जी से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के विषय पर एक वार्ता।
2: दादी, कौन सा प्लांट है?
3: टैंजरीन। बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। आइए अब आनंद लेते हैं महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत का। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला नगमा पेश है चकदे इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई की आवाज में। बोल जगदीप सैनी के और संगीतकार सलीम सुलेमान।

अगला नगमा सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में। दिल धड़कने दो फिल्म के इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

अगला नगमा सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में। दिल धड़कने दो फिल्म के गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

महाराज फिल्म से भी आप सुन रहे थे कौसर मुनीर का लिखा नगमा, स्वर मोनाली ठाकुर के और संगीत सोहेल सेन का। श्रोताओं, नारी संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है निर्जा फिल्म से कविता सेठ और साथियों की आवाजों में। गीतकार प्रसून जोशी और संगीत दिया है विशाल खुराना ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:51 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है ब्रह्मास्त्र फिल्म से अरिजीत सिंह के आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

अगला नगमा पेश है तुलसी कुमार और अखिल सचदेव की आवाजों में। कबीर सिंह फिल्म के इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है अखिल सचदेव ने।

सुल्तान फिल्म से भी आप सुन रहे थे इरशाद कामिल का लिखा नगमा, स्वर राहत फतेह अली खान के और संगीतकार विशाल शेखर। श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नव गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा पेश है क्वीन फिल्म से अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह की आवाजों में, बोल अन्विता दत्त के और संगीत अमित त्रिवेदी का।

अगला नगमा सुनिए गुड न्यूज फिल्म से रोचक कोहली और लव और आकाश की आवाजों में। गीतकार गुरप्रीत सैनी और संगीत दिया है जॉनी सिम्पसन ने।

0: गवर्नमेंट स्कूल क्रिमितेंग के तीसरी कक्षा की छात्रिका कुमारी तिंजिन न्यूटन से एक हिंदी कविता। कविता का शीर्षक है सीखो।
1: नमस्कार, मेरा नाम तिंजिन न्यूटन है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरा विद्यालय का नाम है राजकीय माध्यमिक विद्यालय क्रिमितेंग। आज मैं आप समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा कविता का पाठ है सीखो और इसके कवि है श्रीनाथ सिंह। सीखो फूलों से नित हंसना, सीखो पौधों से नित गाना, तनु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लाता और पैरों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमितेंग तवांग की तीसरी कक्षा की छात्रिका कुमारी तिंजिन न्यूटन से एक हिंदी कविता।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:12 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। कार्यक्रम दर्पण में आज आप आनंद लेंगे संगीतकार जतिन ललित द्वारा संगीतित चंद हिंदी फिल्मी नगमे। तो चलिए कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं। सिलसिला है प्यार का फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू के आवाजों में, बोल समीर के और संगीत जतिन ललित का।

अगला नगमा पेश है उदित नारायण की आवाज में। प्यार किया तो डरना क्या फिल्म के इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सवारा है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत संगीतकार जतिन ललित द्वारा संगीतित चंद हिंदी फिल्मी नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा पेश है मोहब्बते फिल्म से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत जतिन ललित का।

कुछ कुछ होता है फिल्म से भी आप सुन रहे थे समीर का लिखा नगमा, स्वर उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति के, और संगीतकार जतिन ललित। श्रोताओं, दर्पण कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल सरकार के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान राज्य ने बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य मंत्रिमंडल ने नागरिकों को बेहतर, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नवाचारी पहलों को भी मंजूरी दी है। इनमें चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन फॉर रेजिलिएंट, इक्विटेबल एंड हेल्थी स्टेट, सीएम केयर्स, स्टेट यूनिफाइड रिस्पॉन्स अगेंस्ट ड्रग्स सब्सटेंस हार्म एंड एडिक्शन, मिशन सुरक्षा तथा आयुष्मान आरोग्य शिविर, 30 दिवसीय सघन एकीकृत स्वास्थ्य शिविर अभियान शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उन्नत इलेक्ट्रॉनिक

0: ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम EHRMS 2.0 का शुभारंभ किया। ये प्रणाली डिजिटल शासन को और सशक्त बनाने, कार्यक्रम प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा सरकारी सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 1982 में स्थापित पूर्व होटल दोन्यू पोलो अशोक स्टेट गेस्ट हाउस 2 का भी उद्घाटन किया, जिसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक विकसित रूप में विकसित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में वनस्पति, जीव जंतु, कृषि एवं बागवानी पर आधारित एक स्मारक डाक टिकट की श्रृंखला भी जारी की। तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो ने आज स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत EKYC की प्रगति की समीक्षा की तथा जिले के सभी 39 फेयर प्राइस शॉप्स की एक बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी तथा सभी उचित मूल्य दुकान संचालित उपस्थित रहे हैं। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लंबित EKYC मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों को एक सप्ताह के भीतर EKYC पूर्ण करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं और प्रगति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यक होने पर घर घर जाकर लाभार्थियों से संपर्क करने तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करने में उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के भी निर्देश जारी किए हैं। तिरप जिला उपायुक्त बादोनलोम तौसिक ने लाजू प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत म्यांमार सीमा से लगे दूरस्थ गांवों का दौरा कर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित सड़क संरेखण, सर्वेक्षण और निरीक्षण तथा डायवर्शन के लिए चल रही कार्यों की जानकारी दी। उपायुक्त ने भूस्खलन संभावित पांकोंग मार्ग का भी निरीक्षण किया, जहां बार बार होने वाले भूस्खलन के कारण आंतरिक सीमावर्ती गांवों की सड़क संपर्क व्यवस्था प्रभावित होती रहती है। वेस्ट कमिंग जिला उपायुक्त डॉ. दिलीप कुमार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर आयोजित बैठक एवं जन जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने अपने गांवों और समुदायों में उचित कचरा प्रबंधन के प्रति सक्रिय रूप से जागरूकता फैलाने का आह्वान किया है। उपायुक्त ने कहा है कि प्रभावी कचरा प्रबंधन केवल सामूहिक जनभागीदारी से ही संभव है और स्वच्छता तथा पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यापक जन सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि बेहतर सड़क संपर्क, बदलती जीवन शैली तथा पर्यटकों और आगंतुकों की बढ़ती संख्या के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी कचरा प्रबंधन की गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही है। आंजाव कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हायुलियांग गांव और खुपा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का 58वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। इस वर्ष समारोह का विषय था Reflecting on 98 years, reimagining agriculture for विकसित भारत at the rate 2047। कार्यक्रम में भारतीय कृषि को सुदृढ़ बनाने में ICAR के उल्लेखनीय योगदान पर प्रकाश डाला गया। समारोह में 26 किसानों तथा KVK के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिले के किसानों को आजीविका में सुधार के लिए KVK द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न तकनीकों और विस्तार गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई। किसानों ने उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के उनके अनुभव साझा करते हुए KVK द्वारा निरंतर उपलब्ध कराए जा रहे तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग की सराहना की गई। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों अपर सियांग, लोअर सियांग, लेपारादा, शी योमी और अपर सुबनसिरी को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही कुरुंग कुमे, पापुमपारे, अंजाव, लोहित और चांगलांग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani Itanagar, the news read by Morgan Bagra. The Arunachal Pradesh Cabinet today unanimously passed a resolution marking the historic occasion of Team Arunachal completing 10 years in office under the leadership of Chief Minister Pema Khandu. The resolution noted that Arunachal Pradesh has moved forward through major infrastructure and connectivity projects. The State Cabinet today approved a series of innovative measures designed strategically to enhance the availability, affordability, quality and reach of healthcare and well-being related services to the citizens in the state. The National Testing Agency has declared results of NEET Undergraduate 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the

बी प्राक के इस देशभक्ति नगमे के साथ ही कार्यक्रम कौमी तराने अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है ग्राम पंचायत बथेना पटना ड्रग डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से बलकारा वर्मा, अंजानी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उमेश मिथिलेश वर्मा ने। आप सभी के फरमाइश पर पेश हैं प्यासा फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया गीत, बोल साहिल लुधियानवी के और संगीत एसडी बर्मन का।

फरमाइश प्राप्त हुआ है दादा बाबू रोड गिरिदीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत से धरती फिल्म के नगमे का। इस नगमे को लिखा है हजरत जयपुरी ने, गाया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी के फरमाइश पे प्रस्तुत है सबक फिल्म से मुकेश का गाया नगमा। सावन कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम का अगला फरमाइश किया है मेहरनगर उमर कैद महाराष्ट्र से अभिजीत गवनकर राही श्रीमती सरिता गवनकर और प्रिंस एकांश गवनकर आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से सिद्धांत गवनकर परिणीता गवनकर और लाडला टुकटुक गवनकर ने आप सभी के फरमाइश पे पेश हैं दूसरा आदमी तन से किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया नगमा गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीत राजेश रोशन का।

सुनिए दातारंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा के फरमाइश पर प्रसाद फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत शंकर जयकिशन की लिखी शंकर जयकिशन द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है रमेश शास्त्री ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है खिनमे तवांग से सांगे नुरबू और रवि ने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है मेरा लहू फिल्म से अलका याग्निक और शब्बीर कुमार का गाया गीत।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ एट 9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पीवी सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। हॉकी इंडिया ने आगामी हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा की। सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी। हंसिका लांबा ने बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में रजत पदक जीता। नेहा और मानसी स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में युवाओं को हर सुविधा प्रदान करेगी। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हराया, श्रृंखला 1-1 से बराबर की। और फीबा बास्केटबॉल अंडर 18 महिला एशिया कप में भारत ने इंडोनेशिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां अनुभवी खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पीवी सिंधु जापान

0: बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला नोजोमी ओकुहारा से होना था, लेकिन वह चोट के कारण मैच में हिस्सा नहीं ले सकी। ये इस सीजन में सिंधु का तीसरा सेमीफाइनल है। इससे पहले वे मलेशिया सुपर 1000 और ऑस्ट्रेलिया सुपर 500 के सेमीफाइनल में पहुंची थी। इसके साथ ही 2023 डेनमार्क ओपन के बाद ये उनका पहला सुपर 750 सेमीफाइनल है। 31 वर्षीय खिलाड़ी पीवी सिंधु की निगाहें इस सीजन का पहला खिताब जीतने पर होंगी। सेमीफाइनल मुकाबले में उनका सामना टोक्यो ओलंपिक चैंपियन और विश्व की चौथी नंबर खिलाड़ी चीन की चेन युफई से होगा। सिंधु और चेन युफई के बीच अब तक कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में सिंधु उनसे 6-8 से पीछे हैं। सिंधु को युफई के खिलाफ पिछले 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। सेमीफाइनल में जीत न केवल सिंधु के हारने के इस सिलसिले को खत्म करेगी, बल्कि लगभग 3 साल में उनके पहले सुपर 750 फाइनल में पहुंचने का रास्ता भी साफ होगा। अब भारतीय प्रशंसकों की निगाहें 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पर ही टिकी होंगी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में सिंधु अब भारत की एकमात्र दावेदार हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्सकैन।
0: हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में सिंधु 6-8 से पीछे हैं, लेकिन कल भारतीय प्रशंसकों की निगाहें सिंधु के अच्छे खेल प्रदर्शन पर होंगी और उम्मीद करें कि वो फाइनल का टिकट अपना पक्का कर लें। और अब बात करते हैं हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। सुनते हैं किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया।
2: बेंगलुरु में नेशनल कैंप में ट्रेनिंग कर रही इस महिला टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और होनहार युवा खिलाड़ियों का संगम है। इन युवा खिलाड़ियों ने हाल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में सभी को प्रभावित किया है। खासकर पिछले महीने न्यूजीलैंड में हुए FIH नेशंस कप में टीम का प्रदर्शन दमदार रहा था और भारत ने बिना कोई मैच हारे खिताब पर कब्जा जमाया था। विश्व कप के लिए टीम में सविता और बिचू देवी खारीबम को गोलकीपर के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि डिफेंस यूनिट में इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथंत ज्योति और शिल्पी डबास शामिल हैं। मिडफील्ड में कप्तान सलीमा के साथ निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, नेहा और दीपिका सोरेंग को रखा गया है। वहीं फॉरवर्ड लाइन में लाल रेमसियामी, ऋतुजा दादासो पिसल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग को जगह दी गई है। विश्व कप के लिए चुनी गई टीम को लेकर कोच मारिजाने ने कहा कि हमने खिलाड़ियों का एक संतुलित ग्रुप चुना है। टीम ने टूर्नामेंट से पहले कड़ी मेहनत की है और हमें इस ग्रुप की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हम दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलने और सबसे बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। भारतीय कोच ने कहा कि ये विश्व कप आगामी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों के लिए बेहद अहम है।
3: I take it as a preparation and take as said we are going to the World Cup to perform and the performance will help us to be at our best at the Asian Games because at the end we will want to win the Asian Games for the qualification. So it's not just one, the World Cup will, the information from the World Cup will help us in at the Asian Games, but yeah, performing at both would be great.
2: भारतीय टीम को चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ पूल डी में रखा गया है। टीम अपने सभी पूल स्टेज मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में वागेनर हॉकी स्टेडियम में खेलेगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 16 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगी। इसके बाद 18 अगस्त को साउथ अफ्रीका और 20 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्सकैन।
0: भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड में हुए FIH नेशंस कप में दमदार प्रदर्शन किया था और भारतीय प्रशंसकों को अब उम्मीद होगी कि भारत इस विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय आगामी टूर्नामेंट्स में भी उनकी मजबूत दावेदारी पेश होते रहे। अब सीधे चलते हैं बॉक्सिंग कुश्ती रिंग की ओर। बुडापेस्ट में भारतीय महिला पहलवान हंसिका लांबा ने पोलियाक इमरे वर्गा जानूस और कोजमा इस्तवान मेमोरियल 2026 रेसलिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता को बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज भी कहा जाता है। 59 किलोग्राम महिला वर्ग में नेहा और 62 किलोग्राम वर्ग में मानसी स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। साथ ही इसी भार वर्ग में सविता भी कांस्य पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। एक रिपोर्ट।
4: बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में महिलाओं के 55 किलोग्राम स्पर्धा में हंसिका लांबा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। 19

0: वर्षीय हंसिका को महिलाओं की फ्रीस्टाइल कैटेगरी में फ्रीस्टाइल कैटेगरी के फाइनल में यूक्रेन की नतालिया क्लिवचुत्स्का से 5-0 से हार का सामना करना पड़ा। हंसिका लांबा ने क्वार्टर फाइनल में तुर्की की तूबा डेमिर को 8-4 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की और फिर सेमीफाइनल में पिछड़ने के बाद जर्मनी की अनास्तासिया ब्लेवास को 10-7 से हराया। महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में भारत की प्रियांशी प्रजापत कांस्य पदक जीतने से बस एक जीत दूर रह गई। पुरुषों के 125 किलोग्राम वर्ग में रजत रूहल ने कांस्य पदक जीता। उन्हें यह पदक तब मिला जब उनके प्रतिद्वंदी अमेरिका के मेसन पेरिस ने चोट के कारण भारतीय रेसलर को वॉकओवर दे दिया। रजत क्वार्टर फाइनल में पोलैंड के कामिल कोसियोलेक से हार गए थे, लेकिन रेपेशराज राउंड में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के ग्वानुक किम को 8-4 से हराकर पदक मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में भारत के पदकों की संख्या अब 5 हो गई है। गुरुवार को मिले 2 पदकों के अलावा ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत ने बुधवार को पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि दीपक ने 61 और विशाल कालिरमाना ने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते। वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघाल कल महिलाओं के 53 किलोग्राम डिवीजन में मुकाबला करेंगी। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
1: भारतीय पहलवानों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और अब सबकी निगाहें नेहा, मानसी, सविता और अंतिम पंघाल पर होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर में विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी भारत पूरी तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स भी आयोजित की जाएंगी।
2: साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला है। 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हर खिलाड़ी को जोरदार तैयारी करनी है, पूरा दमखम लगाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार आपको हर सुविधा देगी। आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो होने वाली, आप इसके लिए भी खूब तैयारी कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है हरियाणा के बेटे बेटियां हमेशा की तरह इनमें भी अपना परचम लहराएंगे।
1: अब सीधे चलते हैं बास्केटबॉल कोर्ट की ओर, जहां भारतीय महिला टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फीबा बास्केटबॉल अंडर 18 महिला एशिया कप में भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने इंडोनेशिया को 79-46 से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कल थाईलैंड के बैंकॉक में खेला जाएगा। भारत ने इस प्रतियोगिता में थाईलैंड और ओमान को हराकर दमदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम ने अपने ओपनिंग मुकाबले में थाईलैंड को 106-62 से और दूसरे मैच में ओमान को 99-17 से हराया था। अब सीधे रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। कार्डिफ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को नाबाद 99 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने सधी हुई शुरुआत की। कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी की। गिल 31 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े। रोहित ने टीम के खाते में 26 रन का योगदान दिया। 111 के स्कोर पर ईशान किशन के रूप में 3रा विकेट गिरा। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली के साथ 4थे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 178 रन तक पहुंचाया। लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। कोहली ने 66 गेंद में 8 चौकों के साथ 65 रन की पारी खेली, जबकि अय्यर 71 गेंद में 7 चौकों के साथ 66 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने 13 गेंद में नाबाद

20 रन बनाए। भारतीय पारी 44 ओवर में केवल 233 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट लिए। 234 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत निराशाजनक रही। बेन डकेट पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। इसके बाद जैकब बेथेल भी जल्दी ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद जो रूट ने मोर्चा संभाला, रूट ने विल जैक्स के साथ छठे विकेट के लिए 72 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। रूट ने गस एटकिंसन के साथ 7वें विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 45वें ओवर में आसान जीत दिलाई। मैच के बाद

0: for 4 years. And similarly to that series, we lost the first game, learned lessons, and evolved and got better and adapted. And that's exactly what we did again today. The challenge is, can we do it at Lords? When the pressure's on against, a brilliant team, a number one ranked team in the world, for us to stand up and play like that, I think shows where we are and is a good benchmark for us. So, you know, let's back it up again at Lords. And then I think there's a very different look to, or perception to, where this team is at.
1: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि मध्य क्रम में लगातार विकेट गिरना हार का कारण बना।
2: Quite disappointing, to be honest. You know, we thought 300, 310 would be a good total after 25 overs. We were at a good position, but you know, we lost too many wickets in the middle overs. We know our tail enders are you know, not the best batsmen, but I think we expected a bit more from our lower mid order, and we were not able to capitalize on the start that we got. But hopefully, you know, the next time we get there, we'll try to build some small partnerships and take it on from there.
1: श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मैच 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
3: बुलावायो में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए, जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 152 रन पर ही सिमट गई। तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर है। पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को 32 रन से हराया था। उधर मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश ने सारंग ने कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इंग्लैंड पर लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाली तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश की रहने वाली क्रांति गौड़ ने टेस्ट मैच में कुल 7 विकेट लेकर भारत की 270 रन की शानदार जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए

0: प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहां लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
1: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक RSS 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि RSS ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत

0: करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress. He said it is the endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagrik Deva Bhava is reflected in government's work.
2: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक

0: का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
0: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant railway station. Union Minister of Railways and Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav and other dignitaries were also present on the occasion. Prime Minister Modi also inaugurated national highway projects, including a four-lane greenfield Delhi-Amritsar-Katra expressway, and laid the foundation stone for the development of six-lane greenfield Southern Ludhiana bypass. Earlier today, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at the Jind railway station in Haryana. The launch marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, Indian Railways has undergone a major transformation over the past 12 years and described the hydrogen train as a historic milestone that has given Jind a special place in India's history.